0: Saturday nights with Nads.
1: Get smiling and darling.
0: Friday nights with Shivy.
2: I'm going to let it go because I'm nice like that.
0: This is Sunrise Radio.
3: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहि

0: Sunrise Radio.
1: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Wellman and Wellwoman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
2: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं, 2000 पाउंड का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 पाउंड के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स। अभी एंटर कीजिए एट winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए। दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th मई टू 6th अगस्त। यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर, विथ वन एंट्री पर हाउसहोल्ड, टीज एंड सीज अप्लाई। विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू ट्राई दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती।
3: न्यू फील्स गुड,
4: हाँ नया है।
3: New feels good.
5: Fly on Air India's new fleet to India and enjoy world-class cabins, gourmet meals and warm hospitality. New feels good on Air India. TNC apply.

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम।
2: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Watch Bareilly Ki Bachchan Monday to Friday at 8 p.m. on Colors TV. मंडे द 3rd ऑफ अगस्त आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ, मेरा और आपका साथ मंडे टू फ्राइडे 9 से 12 के बीच। माय गुले गुलजार इन ईलिंग, आई होप यू हैविंग अ ब्यूटीफुल मंडे। द हिट ऑफ द आवर ऑन सनराइज रेडियो ब्रॉट यू बाय साउथ होल ट्रैवल, फ्रॉम बीच गेटअवेज टू सिटी ब्रेक्स, डिस्कवर वर्ल्ड वाइड डील्स टुडे एट southholetravel.co.uk। नीति मोहन, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, टेकन फ्रॉम चांद मेरा दिल, माई फेवरेट वर्जन ऑफ इश्क निभावण दे। जहां भी आप सुन रहे हैं, जो भी इस वक्त कर रहे हैं, होप यू हैविंग अ ब्यूटिफुल डे। द सन इज शाइनिंग, एक्चुअली इट्स गोना बी बेकिंग इन द आफ्टरनून। प्लीज डू स्टे कूल, स्टे हाइड्रेटेड, ओके?

0: Okay, so we are looking for a film. We're looking for a film. No clues to start with, as per usual. Tell me what it is. Here is part one. I am an epic fantasy action spectacle that follows a young DJ living in Mumbai who discovers he possesses a strange supernatural immunity to fire. His ordinary life turns upside down when he experiences terrifying visions of a dark force seeking three broken pieces of an ancient supreme weapon, a weapon capable of destroying the universe if unleashed. What film is that? I am an epic fantasy action spectacle that follows a young DJ living in Mumbai who discovers he possesses a strange supernatural immunity to fire. His ordinary life turns upside down when he experiences terrifying visions of a dark force seeking three broken pieces of an ancient supreme weapon, a weapon capable of destroying the universe if unleashed.
1: Travel invites you to Dubai, where world-class hospitality, stunning resorts and iconic attractions await. From beaches to desert adventures, there's something for everyone, all at unbeatable prices. Call 0208 574 8410. South All Travel, at all protected.
2: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली, ओपन ट्यूसडे टू संडे।
3: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट हिमालय कारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल, अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।